हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर

मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी 7वीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु, डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी है। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक
विकसित भारत

0: बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ஹிந்தி தினத்தையொட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் விடுத்த செய்தியின் ஒலிப்பதிவு கேட்டோம்.

0: निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Union Home Minister also presented the Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Kirti Awards 2025-26 at the 6th All India Official Language Conference in Navi Mumbai today. We now go live to listen to the Home Minister's address.
2: बड़े बड़े वैश्विक मंच पर देश के प्रधानमंत्री को विदेशी भाषा की जगह अपनी भाषा में बोलता हुआ सुनते हैं तो सीना सम्मान के साथ चौड़ा हो जाता है। ये सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की भाषाओं को देने का काम किया और कई जगह पे राजभाषा को उन्होंने वहां कई जगह पे